I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त ख्यार और श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भाऊजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त ख्यार औत श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भौजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 2 बजे दोंदर दखांस्तांद ओम 2 यूर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम ओकनबर्ग, ओकनबर्ग स्ट्रैट 21 देनहाग में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार मुरली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio. Jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujaneta.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl।

दूर विवाह होने वाले हैं, दूर शादी होने वाले हैं, या किसी का मुंडन संस्कार है, उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं। 15 फरमाइश फोर मार होने और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl।

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी पिटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
3: चलती है क्या नौ से बारह संगीत के रंग उजाला रेडियो पर

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

0: को के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।

0: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।
1: हमारे रंग देशवा

0: सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।
1: सूरज छिपे अदरी बदरी, चंद्रमा छिपे अमावस आए, पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे ही छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओंठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।

0: सैया धुन होए पिया धुन होए अब नहीं अरवा ना भावे।
1: सैया सैया धुन होए पिया पिया धुन होए अब न...

सुनने वालों नमस्कार, ये है उजाला रेडियो का बैठ गाना हंगामा प्रोग्राम। वेलकम बै उजाला रेडियो और देश गजलग जोंदाग मिदाग। और लीफ लाइजरस खा लेकर सिट एंड खनीत फ्रॉम द म्यूजिक। अब आ रहे हैं एक जबरदस्त मस्त बैठ गाना।

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: ए बापू,
1: अरे की है बरखुरदार।
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
3: की है बोल भी।
2: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
3: हाय
1: की कहे, की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
4: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: दिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात। ले ले, बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: मारी सारी उम्र की कमाई गई डॉलर है। हाय नैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहीद गुलजार। ये है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। हरे को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है। वेलकम बैक।

द लीजेंड इन ब्रॉडकास्टिंग यू आर उजाला रेडियो का पैगाम में शहीद गुलजार के जरिए कुछ मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में वंस अगेन मैशअप।

जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। यू आर के फोन का नंबर है एमस्टरडेम में 020-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते एक ओल्डी हो जाए प्रोग्राम में इस बार है। फिल्म का नाम सत्यमेव जयते, जानू मेरी जानू। जनता की आवाज, आप ही की आवाज। यू आर उजाला रेडियो।

दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, जानू मेरी ये जानू। फिल्म जीरो का एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं। वर्ल्डवाइड आप उजाला रेडियो को सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना, सुनते ही जाना, आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान, सूरीनाम, हॉलैंड से या अफ्रीका से, अफ्रीका में कोई रहे हैं

जुगाड़ का पैगाम है, प्रोग्राम को आप सुनते रहना, सुनते जाना। कुछ मिले जुले संगीत हम आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं है गीत को क्या हुआ, बीच में रुक गया, फिर भी हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं।

0: कैसे हो? 24/7
1: उजाला
2: उजाला उजाला
1: लीजिए इस बार प्रोग्राम में जगजीत सिंह की आवाज में ये सिलेक्शन। अरे प्यार मुझसे जो किया, जगजीत सिंह की आवाज।

प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, प्यार की आंधी में बह जाओगे। कुछ इस तरह सा सिलेक्शन आपने भी सुने हैं एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में। मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं युवाड़ उजाला वीडियो के जरिए। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन। आप हमें जहां से सुन रहे हैं, सुनते रहना, सुनते ही जाना।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best.
5: The best.
1: जिसके लिए सबको छोड़ा, सबकी छोड़ दे रही, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। फिल्म का नाम भी साजन की सहेली। आइए मिलकर सुनते हैं सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज़।

वो बेवफा, अरे बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। 1981 का फिल्म साजन की सहेली के सिलेक्शन आपने भी सुने हैं, सुलक्षणा पंडित और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज। घड़ी तरफ देखा जाए तो धीरे धीरे वक्त हो रहा है स्टूडियो से जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको कुछ और मैशअप सॉन्ग्स सुनाने वाले हैं। आइए दो चार सिलेक्शंस और हम आपको सुनाने वाले हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, हमारे सभी श्रोताओं को एक मुबारक दिन, एक शुभ दिन प्रकट की जा रहे हैं। आप हमें जिस हालात में भी आप हैं, जिस हालात से आप भी हमको सुन रहे हैं, फिर भी आप खुश रहे और सलामत रहे। अगर आप बीमार या तो लाचार है, आपसे यही कहूँगा, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाना।

0: दे तू मेरे मोरे है गेरुआ। हमारे सभी श्रोताओं के मध्य में कुछ मिले जुले संगीत पेश किए जा रहे हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है। फोन का नंबर रेडियो के क्षेत्र पर 020-409-0807।
1: तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब।
0: यस सर, इट्स द लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग। तू जाने है तो।

मिले जुले संगीत आपके खिदमत में हमने पेश किए हैं, उम्मीद है आपको मन भाया। गजल आपको सुनाए, कुछ फिल्मी सिलेक्शंस और कुछ मैश अप सॉन्ग्स और रिमिक्सेस। युवा के सभी श्रोताओं को हम यही कहेंगे कि हमारा साथ देने के लिए, प्रोग्राम सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Uyala Radio ka paigham.

यहाँ तक आपने सुने हैं आपका खादिम शहीद गुलजार को। अगर हमारा गुस्ताख मुखारबिन से कोई भी गलत शब्द फिसल गया हो तो आप हमें ना समझ जानकर माफ कर देना। इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रोग्राम को आप सुनते रहें, ना सुनते जाना हमारे बाद में आपको और कौन खिदमत करने वाले हैं, कौन आपका सेवा करने वाले है। युवा के साथ जैसे कहा एक शुभ दिन, हम आपसे फिर मिलते हैं। शुभ वीकेंड आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं।

नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। एश किंग एंड जोनिता गांधी, इन दोनों से आप गीत को सुने। और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा उजाला.nl।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते, ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। गुलाम नाना जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल आप सुने, और गुलाम अली की आवाज़ में अब आप एक गज़ल को सुनेंगे। बहुत ही मशहूर गज़ल है जो बार बार आप ज़रूर सुन चुके होंगे। अगर इस प्रोग्राम से, जो गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम है, अगर आप इससे और मज़ा लेना चाहे तो आपको एक राय देता हूँ। वो ये है कि घर की चिराग जो है थोड़ा कम कर दे आप, रेडियो की आवाज़ जो है थोड़ा ज़ोर कर दे आप, और आंखें बंद करके और तब मज़ा लीजिए गीत और गज़ल की दुनिया उजाला रेडियो पर।

बहाना याद है, गुलाम अली साहब से आप गजल को सुने और अब हिस्सा लेंगे फरीदा खानम जी, पेश है। शायद आप जाना चाहेंगे तो गुजारिश है इस गीत सुनने के लिए, और इस गीत के सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि आप जाएंगे या यहीं पर सुनेंगे।

वाह वाह, फरीदा खानम से आप गज़ल को सुने, और अब इस गज़ल के सुनने के बाद आप बात मेरी तो इतनी मान ले कि आज जाने की जिद ना करो। अब हिस्सा लेंगे मेहदी हसन, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया। इस प्रोग्राम को सजा रहे हैं इन लोगों के मीठी मीठी आवाज़, कलाकारों की मीठी मीठी आवाज़।

चाहूंगा। मेहदी हसन की आवाज में गजल को आप सुने और गीत और गजल की दुनिया जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक फनकार के बिना बनाना नामुमकिन है, और वो है पंकज उदास जी। पेश है

जान लिया ना आप कि पंकज उधास के बिना ऐसा प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। और इस गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम में अब हिस्सा ले रही है चित्रा सिंह।

लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी है और उधर तो आहिस्ता आहिस्ता। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। अब हिस्सा ले रही है आशा जी। उजाला रेडियो है ये।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम जो है, तो यहीं से दूसरा भाग आरंभ किया जा रहा है। और शुरुआत इस भाग में करेंगे जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह।

घट घटाएं खुशबू उन जुल्फों के नाम, पंकज उदास की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया आपकी खातिर बना रहा हूं। अब मेहदी हसन जी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, पेश है

हमें कोई गम नहीं था, हमें कोई गम नहीं था तेरी दोस्ती से पहले। मेहदी हसन की आवाज में इस गजल को आप सुने।

हजार आंधियां आई संभल गया नवरोग। अनूप जलोता जी से आप सुने गीत और गजल की दुनिया, प्रोग्राम उजाला रेडियो पर।

छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। गुलाम अली की आवाज उजाला रेडियो पर, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, प्रोग्राम जो हर एक इतवार की रात 9 और 11 के बीच बनाया जा रहा है यहीं पर।

गुलाब हो जाए, पंकज उदास की आवाज़ में आप गज़ल को सुने। और अब आज का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया में एक आखिरी गज़ल को आप सुनेंगे, इसी के साथ हम रुखसत होंगे। और यही वादा के साथ कि आने वाले हफ्ता हम फिर आपसे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के मिलेंगे। आज सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि एक बार फिर अपने नए एल्बम आपकी सेवा में मैं और मेरे साथी लेकर हाजिर हूँ। आपके प्यार, स्नेह और पसंद की वजह से ये मुमकिन हो पाया। अब की बार मैंने अपने को सिंगर्स के साथ डुएट्स, मेरा मतलब है युगल गीत, पेश किए हैं। एक सीडी में मेरे सेमी क्लासिकल फिल्मी गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस संग्रह में शामिल हैं मेरे पसंदीदा सीनियर सिंगर्स के लाजवाब गाने और कुछ गैर फिल्मी गीत भी। इन गीतों को याद करते वक्त वो जमाना याद आ गया जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। कुछ दोस्त पुराने आ पहुँचे और जिक्र तुम्हारा चल निकला। आँखों में चढ़ी बरसात बहुत, यादों में ढले नगमात बहुत।